कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशंत मूर्ख अंध घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत काल वाय संत पापी पाप अशंत मूर्ख आर कर संत मलेच मल पाए अशंत निंदक।

अपने जाए खाला भी खाला है नदियां आपसे बाहर सोमना जान समुद्र चाहिए अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुनना।

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ रहरास हर जुग जुग भगतू पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया

दुखदारु सुख रूप भया जासुकताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो। बलहारी कुदरत।

गाम चुदनो इंद्र इंद्रातन बैठे देवती आदरण नाले गाम चुदनो चित समाधि अंदर गाम चुदनो साध विचार गाम चुदनो जति छति संतोखे गाम चुदनो वीर करारे गाम चुदनो पंडित पढ़न रखी सारे

सब सुरते मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाय, कहन ना जाई तेरे तिल वडियाय, सब सत सब तप सब चंगियाई सिदा प्रखा की।

विसरे मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे भूख, पुत भूख खाए चलिए दुख, सौ क्यों विसरे।

जाय। हर कीरत हमरी रह रास राव, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रकाश, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नी आए, दृग जीवे दृग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन दुर्मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर।

लोक बनता कोई ना किसी दरिया सिर सिर जिग संभाई ठाकुर काहे मन भो करिया उड़े उड़ आवे सूता तिस पाछ बचरी छरिया तिन कवन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल दरिया।

तेरे भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहं तुझे हर अनेक अनेक अनंता तेरे अनेक कराह हर पूजा जी तपता पह जप बेअंता तेरे अनेक पड़ा है।

आपहात जाय मोहि बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज चंगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर बजन के रह पियासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो पर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन छात्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया वो जो सदा हमारे पछा सीरियस तुझ्यो कार्यो।

काल पाए ब्रह्मा बपुतराव, काल पाए शिव जी बपुतराव, काल पाए कर विदन प्रकाशा, सकल काल का किया।

सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तहे को हमारे, सकल प्रजा जन आप सवारे, सेवकन को

चीटी ते पुंचरिया सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखे एक एक के पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकरख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ जेते बदन।

कौन सुमट भयो शंकर कथा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभो आद जुगाद रूप सियंभो अवृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार अचुक संग्रह दुष्ट जिते उठवत उठ पाता सकल मरे छो रण काता जे आस तुझ ताओ तरनी पारे तिनके दुष्ट दुखत हाव मारे पुरख जवन पग प्रे तिहारे तिनके तुम संग

दुष्ट अरिष्ट त्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाई निहार हूं ताके ताप तनक महार हूं रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा सब सकै ना कोई।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। रास तुम मात पिता हम बारक,

वाहिगुरु वाहिगुरु ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ने तिहाय बिरंगत गुरु की अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे शब्द बजाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निध आवे दाई सब ताई हुवन साधु श्री पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुवन साधु श्री पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ तरतन दीदार दा ध्यान दर कर बोलो जी श्री वाहिगुरु गुरु सिखा दा मन देवा मत उचे मत पता राखा पु वाहिगुरु ए अकाल प्रपंत जामे अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारिया गुरुताम तेरा तो पंथ नो विछड़िया गया कुले तरतन दीदार सेवा संभालता दान अपने प्यारे खालसा पंथ नो बख्शो हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान योटिया दी योटनी आसरिया दे आसरे धन धन त्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज से पातशाह जियो आप जी दे चरणा कमला विखे अरदास बेनती जोड़नी उच्चे पातशाह आप जी ने महान अपार बख्शी दिती अच्छे पासी अमृत वेले तो लैके इस वेले तक समूह संगता अनुकूल दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल किया उपरंत जे पासे इस वेले आप जी के पवित्र दीवाना की समाप्ति तो उपरंत सोहले साहब जी के पाठ किते बाणी प्रजम के पासे आप जी की सेवा संभाल कर जा हुई भुलना चुका दी कि मां कनी अगे तो सुध ते सपट बाणी परंदा बाल उदम बख्शिश करना बाणी पढ़ी सुनी सचित प्रवान करना बाणी ता भाव दर आई साध सिंह दे हृदय विच पटावना दर आई साध सिंह दी हाजरियां लिखे लावन तिलपुल भेटा मधुर ते प्रवान करनिया संगता नूं अपने चरणा नाल जोड़ के रखना अपने नाम दा वासा बसिश करना सतगुरु जीओ घर दे विच सुख शांति वरतावनी सदाई चढ़दियां कलां विच बख्शिश करना सतगुरु जीओ कारोबार विच वादे बख्शिश करने खजाने भरपूर करना चे पासी इस वेले आप जी दे सुखासन ते आरन चे पासी संगतां सेवादार आप जी दे चरणा विच हाजरन चे पासी आप जी चाले पाउन की कृपालता करो सही प्यारे मिल च नाम जपचे नाम चिति आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने वाहिगुरु जी का खालसा

रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ कै सिमरन साधु कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन बिन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमर है जिन आप सिमराए, नानक थाक लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उधर ही मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब कीश सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमुहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरनते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे, संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हुना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमर है से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंड जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दल, तय केवल नाम संग तेरा चलै, जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपह मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निसुतरै, अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिहे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही, अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम, हौं मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै,
ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साधक संग जिहे मार्ग के गने जाहे न पोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिहे पैंडा महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को ना जियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महापयान तापत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहा त्रिखा मान तुझ अकरख है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरत बबेक है हर का नाम जन कौ मुकत जुगत हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जापत कब परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जापत कछु नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात ए हर को नाम कामतहिन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल काश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमय कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमे फिरे चैर जीवै महा उदास तपी सर थीवै अग्न माहे होमत परान कनक अश्व है वर भूमदान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै ताओ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटाए गर्भ गुमान न मन ते हुटाए सोच करे दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहू न बिखिया टरे जल धोवै बहु देहे अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कूट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट सनाही ऊभ पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जाम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग इहोमै छोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊचा
ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵ ਉਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਵਿਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਸੋਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਸ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖ ਨਹਾਰ, ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਵੈ, ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਧ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਨਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸਪਰ ਹਰੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ, ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ਼ ਨਾਹੇ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਕਰੈ ਅਥਾ, ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ, ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਜੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਾਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੂੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੁਪਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ, ਲਾਗ ਹਿਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀ ਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਭੀ, ਹੈਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਰ।

आप सुनने हारु आपी एक आप बिसथारु जाति सुभावे तन सृष्ट उपाए आपने भाण लय सुमाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जागत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो सामदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब तां के हाथ दीन दयाल अनाथ तू नाथ जिस राखै तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मनहु बिसारै तिस ताज अवर कह को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जमी रहे उप्याप प्रत पालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवको सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पाए निर्वैर आन देन पूजह गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मिले साध संग मेल करहो आनंद गुण गावो हो प्रभ परमानंद राम नाम तत करहो विचार दुर्लभ देखा करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तन का यह सुआओ आठ पहर प्राप्य खो नेरा मिटया ज्ञान बिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेव सुवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगा निभ है खेप तुम्हारी ए काटे कर खो मन माहे नानक बहुर नाया वह जाए तिसते दूर कहा को जाए उबराए राखन हार त्याए निरपहो जपाए सगल पहो मिटाए प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन कौ कोई न पौचन हार सर ऊपर ठाटा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखद उद्धत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहत निहाल ताके निकट नयावत काल अमर पहे अमरा पद पाया साधु संग नानक हर तिहाया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगिरी एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोची पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पणि बैसंत्र माहे चार कुंट दै दिसे समाए तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्ब कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद भरम का नास नानक तिन मैं एहो बिश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की।

होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख हो ताइक न चलै नाल। किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा बुआई है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझै ता हाँ मैं कह न कोई। गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जानै निशान। गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखों विचार। गावै को साज करे तन खेहे, गावै को जी लै फिर देहे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को विखै हाद राह दूर। कथना कथी नया वै टूट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भव अपारु।

के बोलन बोलिए जित सुंतरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जे हाउ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तुस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जी कबुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जी जुग जारे यार जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चिल्लै सब कोए चंगा ना और खाई कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरना सुनै धरत तबल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहि न सकै कार नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का ना सुनै ईश्वर ब्रह्मांड सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुग तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश सुनै सत्संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक

आदनीलनाद अनाहत जुग जुग इको वेस भुगत गयान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिदबरा साध संजोग जोग दार चिलाव है लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदनील नाद अनाहत जुग जुग इको वेश इका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव हुवै फुरमान ऊ विकै उन्ना नदर नायावै बहुता हु विडान आदेश तिसै आदेश आदनील नाद अनाहत जुग जुग इको वेश आसन लोहे लोहे भंडार जो

हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, निर्लीक हैं, अलीक हैं, निर्सीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, असूक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, पुजम प्रया छंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे, समस्ति बेपूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेकी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेते वेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेदी अपेदी अनामंग कामंग, समस्तो पराची समस्तस्त तामंग, तेरा जो चाचरी छंद, चले हैं तले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग प्रया छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमस्तुंग निरनाथे, नमस्तुंग परमाथे, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसीजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्म अंगल कर्म, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं, सर्वंग

अपेवाद उदारु सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकार जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेख आद पुरुष उदार मूरत अजौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम बहीन पेखताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानही जिबे दौर कतेब रूप रंग न जात पासु जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती।

ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सवृच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सु परम रहत भूत लख अभे संग रंग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजनाद रूप असूत अंग हीन अपांग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेट सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चिवेचित मत पार चंद्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा अनांगन भव प्रकाश निश्चिन अनाथ आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आभा अपांग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदर्श धर्म सर्वा प्रनाढ्य अंडंड बाढ्य चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रिया चंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आ चिज देश के आ पिज पिस के आ गंज कर्म के आ पंज परम के आ पिज दुख है के आ दित सुख है के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजिंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपीव है कि चित्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रहा कह कि पाक पे ऐब है कि गै भूल गैब है कि फूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल आला में के साहिब कला में के हुस्न अल वजू है तो मामूल रुजू है हम ईश्वर सलाम में सलीखत मुदा में गनी मुल से कस्त है गरीबुल परस्त है बेलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम में रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है
निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, उवंगाध रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाधे सुबं सर्वभागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, अचिज है, अछूत है, ये नरकं प्रणास है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विपुगत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपांग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक मित्तो अमीक सदैव प्रभा है अजय है जा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमीसल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दिहांत है के राजक रहिंद है करीमुल्क मालक हुसन जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्बल गवन है हमें सुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदिशल अलिख है हमीशल अपीख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो बेपूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपांग है मद पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंजु अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड दिस्विस अपंड जलथल महंत दिस्विस बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु इक सुदाहु ओंकारात कथनी अनाथ खालखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित्चरण नाम अनचिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार अडीठ कर्म अत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर भूल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से है पारते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी कृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है
पाव भंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस की जस है, भुजंग प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी छंद। अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनाशकाश, अगंज अपांज अलख अपख अकाल दयाल, अलिख अभिख अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथि परमाथि अजो नियमोनि, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रया छंद। नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निर्कामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विपूते, सदा सच्चिदानंद सत्रंग परनासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय विपूते गजाय गनी में, हरियं करियं करिमुल रही में, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते,

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारी भारी भजान के भूप फली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे इति भय तो कहा पै कुपतंत को नांगे ही पाए पधारी जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारी।

जति जतार सुबह सुबिचार हजार के दिखे श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक न लिखे शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर परबद पंख हले न हलेंगे तोरा रिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर बचार है सार की तार पछैया तूर्त देश मलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिरनायक जाचिक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविक भुवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत तुन पापन के बुपुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सदैव लोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराध भजोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीवी जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भक्त्यान लगायो नाथ फिरो लिए सास समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास की उब ख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पछा को शीश निवायो ओ बतान को पूजत है पस ओ मृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री

पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबास बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौवा संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं,

जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव तै जछिन उपजायो, आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देहि अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंग

जाकुपी विनपावत वेदा ताको कृपान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे थेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिसजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पै शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पहु आद जुगाद स्वरूप स्वयं पहु आग रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट करें तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हरे हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख

हो सहाई, दुष्ट दोखते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल भिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता। श्री आशुतोष जा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावै सोई, दुख न तुसे व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत रत्रह सहस पनी जय, अर्थ सहस उन तीन कही जय। पाद्र सुधि अष्टमी रवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, ने कह मते के न मान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल

मत उची मत पत दे रख आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीव। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन देदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नू बख्शिश करो।

चवर शत्र तखत मालक धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने कृपा रहमत बख्शिश की, समूह संगत नूं अमृत वेले दे जागने बख्शिश की। अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके आप जिया ने दर आईया संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। आप जी का कोटान कोट धन्नवाद। सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन सुंदर दरबार सजे सजे दरबार अंदर आप जी की अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नित नेम बाणिया दे पाठ होए। गरीब नवाज अगाध बोध बाणी पढ़दियां होईयां बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी। अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया सिर ते मेर भरिया हथ रख के बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दी दात समूह संगत नूं प्रदान करनी जी। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने अमृत वेले आप जी के चरणां विच हाजरियां भरियां तिल फुल पेटावां माया अर्पण कीती रहमत करनी समूह संगत दी हाजरी दर ते प्रवान कर लेना दरों घरों नामदान गुरु सिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरताउणी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरु सिक्खी दी दात विद्या दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरियां सेवावां भेजियां गुरमत अनुसार सबना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनिया सबना नूं दरों घरों नामदान गुरु सिक्खी जीवन बख्शिश करके नवाजना तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाएं पाउणियां। गरीब नवाज अपने टहलियां नूं रहमतां करनियां काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचाउणा श्रद्धा भावना प्रीत वसै दर घर दी सेवा दे योग कर लेना। गरीब नवाज कृपा करनी रहमतां करनियां सदा अंग संग वर्तना कारजां विच सफलता बख्शिश करके नवाजना रहमतां करनियां। गरीब नवाज आप जी दी कृपा सदका चार पैरैन सुख भाणे अंदर बतीत हुई है दिन चढ़े अपने भाणे अंदर बतीत करवाउणा सतगुरु जी कृपा करो आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद ही दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते पावन पवित्र असीस रूप विच हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके नवाजो हुक्मनामे ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करनी सेई प्यारे में जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चितावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला।

आपे ही करुणा कियो कल्या पे ही तै तारी है। देख है किता अपना तर्क चिपकी सारी है। जो आया सो चलसी सब

0: साई कर्क मावनी तो छोड़ी तने पाए, नानके की बारी होर दूजी नाही जाए। सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए सुध।
1: परम सम्मान जो गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जीओ, अमृतमय बाणी श्री आसादीवाद के शब्दों शक्यां सहित अपनिया ने गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के ते ऑनलाइन आप अपने घरी बैठ के बाणी सरवण कीती है। धन्यवाद सबनां दियां हाजरियां अपने दर ते प्रवान करन, सबनों अपने दरों करो नाम दियां दातां सिखी सदक भरोसा बख्शिश करने सेहत न अपने दर घर दे नाल सतगुरु जी जोड़ी रखण। सो आओ हुण समा हो रहा है अज दे मुख वाक दी विचार दा। सरकार जोगियां नी लखविंदर सिंह जी पंथ दे महान विद्वान तख्त श्री दमदमा साहिब वाले आप जिया नूं अमृतमयी बाणी दे अज दी मुख वाक दी कथा सरवण कराउंगे जी। प्यार सहित सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

संत साजन भय सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम ओ लहे अकीर्त घणा

हम राव रहया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मानिया जिन जल थल त्रिभवन घट घट थापिया सो प्रभु।

मार्ग पंथ न जानु विखड़ा, क्यों पाइए फिर पारे सतगुर शब्दी मिले विछुन्नी, तन मन आ गै राखै नानक अमृत बिरख महा।

आई मन मुख आवन जानी, जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी। नानक आपे आप पछाणे गुरमुख।

गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले। गुर अलख लखाया जा तिस पाया, जा प्रभ किर

एक जन्म पाप कर भरमे हुण तौ शरणागत आए दया करहु रख लेव हो हर जियो हम लाग

अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावह जगदीश, ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला, जिन हर हर न

हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगहा अथाहा तू कट कट पूर रहया तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुरु बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुरु शब्द खिन खिन हार नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बुलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे तिनके कोट पा सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दोख सब बिनसे जिन मनचित एक अराध्या तिनका जन्म सफलेउ सब किया करतै जिन गुर बचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते परवान जिन सेवे

जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भय सुहेले, हर राख लिए रखन हार, हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर से

वण त्रिण त्रिपवन सब सृष्ट मुख हर हर नाम चवया सब चब है हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन धन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहु करते जिस हर हृदय

तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवह मेरे स्वामी किस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ किस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिसकै हर गुण हृदय टिक है तिसकै जिस अंतर भाव

सतगुरु कुल खेत नावन गया, नावन पुरब अपीच गुरु सतगुर दर्श पया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिन आप हर मेल आया। तीर्थ उद्यम सतगुरु किया, सब लोग उदरन अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। खबर भई संसार आए त्रैलोआ, देखन आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुर पूरा, तिनके किल विख नास गवाया। जोगी दिग

आड़ दाम किछ पया न बोलक, जागातिया मोहन मुंदन पई, भाई हम करह क्या किस पास मांग है, सब भाग सतगुर पिछे पई, जागातिया उपाव सियान कर विचार डिठा, भन बोल का सब उठ गया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया, मिले आए नगर महाजना, गुर सतगुर ऊट गही, गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारे, तिनका थाउ थेहु गवाया, कीर्तन पुराण नित पुन्न हुवह, गुर बचन नानक।

अविनाशी अभिगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते उस्तत कह न जाए तुम्हारी कौन कहे।

अगम गोचर न जाई हर लखिया, गुरपूरा मिले लखा भी रे रहाओ। जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिवला भी रे। सब को पर

सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाऊ वारी फेरी सदा कुमाई कवन रूप कवन अनूप तेरु नाऊ सर्व प्रत पाल है।

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल वाय संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे असंख मलेच मार पाए असंख निंद

0: पे जाए ए साला जी साला है नदियां पे बाहर पर सोमना जान समुद्र सा करता गिरी तो नौनी
1: अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुना।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवे संत पापी पाप असंत मूड़े आए संत मलेश मल भक्त है असंत निंदक करें पास नानक नीच कह बारे न जाना जो कुछ पावे सही परिकार।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

संत मूर्ख संत भोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वढ़ कमाए संत पापी पाप असंत मूर्ख आर जाए संत मलेच मल पाए असंत निंदक

अंतर गति जग मर नाम सब गुण तेरे सुनाई होए बिन गुण की जन पतन होए स्वस्थ आस पाणी ब्रह्मा सत सुहान सलाम कमल सुरेंगा भक्त कमल कमल सिद्ध कमल कमल सिर्फ

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेच मल पाक खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मिचा मारे न जावा देख जो तुम पावे सही परिपाक।

आपे धरती साजन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम त्याए तू सब किलविख कटे तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है।

था। पूरे गुर का हुक्म ना मनने ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिख माया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अण होते झगड़े दया उस दे गल पाया।

सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाई दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके। ओह बोले किसे न भावनी मूं काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है हर आ

समाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लाहियो न जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम राध्या आप तरया सब जगत तराया। महला चौथा, सारा दिन लालच अट्या मनमुख होरे गल्ला, राती उग्गे दब्या नवे सोत सब ढिल्ला। मन मुखा दै सिर जोरा अमर है नित देव हे भला, जोरा का आख्या पुरख कमाव दे से अपवित अमेग खल्ला। काम व्यापक सुद नर से जोरा पुछ चला, सतगुर के आख्या जो चले सो सत पुरख पल पल्ला। जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिल्ला, सब तेरी बनत बनावणी नानक पल पल्ला। पौड़ी, तू वे परवाहो अथाह है अतुल क्यों तुलिय, सेवड़ भागी।

गुर सतगुर का जो सिख अकाए सो पलके उठ हर नाम ते आवै उदम करे पलके प्रभाती इसनान करे अमृत सरनावै उपदेश गुरु हर हर जप

सगवी मल लाए मनमुख आया, पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया, ओथे भी मुह काला दुहां बेमुखा दा कराया। ताड़ सुनिया सप्त जगत विच पाई, बेमुख सने नफरे पौली पौधी फावा, होए कै उठ कर आया। अग्गे संगती कूड़मी बेमुख रलना, ना मिले ता वहटी भतीजी फिर आन कर पाया। हालत पलत दोवे गए नित भुखा कूके तिहाया, धन धन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया।

सब उपाया महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिस दा नफर कितों रज खाए।

प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख न पायन मुग्ध नर संत नाल खहंदे ओए लोचन उना

बिछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुँह फिक्के थुक थुक मोहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके।

ओए अज्ञा कुस्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ठ उठाही। हर तिनका दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चितलाही। तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराद तू तिस अपड़ को ना सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा जे होंदा गुरु बह टिक्या तिस जन की वड्याई वड्डी होई। तिस को जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मंड नमस्कार करह जिसके मस्तक हाथ धरया गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिक्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले।

से उज्जड़ परम भवाई है जो चाड़ मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओह टोया। कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होय होय रोया, उन

सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर तारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंधरो मन साधारिया। बलिहारी गुर अपने सदा सदा घुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलियन मुख गुरमुख नाम त्याई सी। सो करे ज सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाई सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पाओ सब गवाई सी। जिन रखण कहो हर आप होए होर केती चख चख जाए सी। जन नानक नाम त्याए तू हर हालत पलत छुड़ाए सी। महला चौथा। गुरसिखा के मन भाव दी गुर सतगुर की वडियाई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म चढ़ाई। गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आण निवाई। जिनी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई। हर दरग है ते मुख उजले वह सोबा।

जिन्ना अंदर उमर थल सही जानन सूलिया हर जाने सही बिरहो हाओ तिन विटो सद कुम को लिया हर मेलो हो सज्जन।

सच सलाहना सच सच्चा पुरख निराले सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाले सच सच्चा जिनी

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे ज्यो उपली मजीठे रंग गह गहा त्यो सच्चे नो जियो दे रंग चुलूले अतरती सच्चे स्यो लगा ने हो कूड़ ठगी गुजी ना रहे कूड़ मुलम्मा प्लेट तरे हो कूड़ी करन वड्याईया कूड़े स्यो लगा ने हो नानक सच्चा आप है आपे नदर करे महला चौथा सत संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओए पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करह परोपकारिया हर नाम दृढ़ावे हर

तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया।

आचार्य सतगुरु नो मिले सही जन उभरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुर सिख पुत हो हर जपियो हर निस्तारिया। महला तीजा हमें जगत भुलाया दुरमत बिख्या बिकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लए जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिनी इक मन इक राध्या तिनका कंध न कभू छिजे। धन धन

मन भुख है, मन तृप्त है, हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानी है, दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाह।

मन मुख अहंकारी महल न जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर दरगह सीजे। सतगुर का महल विरला जाने सदा रह कर जोड़

मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कुस्त ओह पाप कमावे क्या ओ सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर पेटे थाए न पाए नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित्त कठोर हैं से बहन सतगुर पास उथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास ओए वल छल कर छत कट दे फिर आए बह कूड़ियारा पास विच सच्चे कूड़ न गड़ई मन वेखो को निर्जास कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चियार सिख बैठे सतगुर पास।

सच्चे साहिब मारिया कौन तिस नो रखै, नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखै। श्लोक महला पंजवा। नानक कोर बहु दुख कणे अकिरत कणा का थान, तिन प्रभ मारे नानका होय होय मोहे हराम। महला पंजवा। अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे, आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवी। तुस दित्ते पूरा सतगुरु हर तन सच अखोट।

अंतर हर नाम बास नासमानी हर दर सोबा महा उत्तम बाणी। जे पुरख सुने सो होए निहाल नानक सतगुर मिलिया पाया नाम तन माल। महला चौथा सतगुर के जी की सारना जापे जे के पूरे सतगुर पावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नू लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन।

तिस जन के बलिहारण है जिन भजया प्रभ निर्वाण जन्म मरण दुख कटिया हर भेटिया पुरख सुजान संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान महला पंजवा पलके उठ पराहुना मेरे कर आवो पाओ पखाला तिसके मन तन नित पावो नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो ग्रह तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो हर नाम वपारी नानका वडभागी पावो पौड़ी जो तुद पावे सो पला सच तेरा पाणा तू सब मैं एक वर्तदा सब माहे समाणा थान थनंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाणा श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल पार पाओ महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पर हर गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल होए चार पौड़ी सही उपरे जगे विच सो सच्चे रखे मुह डिठे तिन्ना के जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सके न लखे श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पा भ्रम फिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई तिस स्यो सब किछ जिसके हाथ क मित्रा सही कांडी है इक विख न चले साथ पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीव हो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पा भ्रम गुर भुख रह नकाई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड़ तू है पा भ्रम नानक सरणाई श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन नकाई जाए नानक लथा तिन स्याओ जिना सतगुर भेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार तो वरतारा जग खे हथ सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस तणी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम न जानी जो जन भेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एह रत्ना खा

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत नूर यार करे अशांत मलेच मार पाए अशांत

0: No, no, go sideways. Take it out completely. Okay. No, you're holding it wrong, Baba. See, the way I was doing it, I was holding it like this sideways. So it goes like this, I could see what I'm doing.
1: You can't go sideways.
0: Why?
1: Because you're in front of me.
0: Oh, no, go. Okay, now it should be easy.
2: हरके प्रीतम साध जाके संग तेरे बंधन छूटै गोपार बम शर्म हृदय कमल कर चरण और आस कज पटल न कीजै सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई नानक जाको कृपा कीजै गोपार बम शरण हृदय कमल चरण और आज कज पटन न की जय सोई भगत ज्ञानी त्यानी सपा सोई नानक जा को कृपा की जय वाहिगुरु जी का खालसा
0: वाहिगुरु
2: नाम श्री वाहिगुरु साहब जी नाम श्री वाहेगुरु साहब
0: जी
2: नाम श्री वाहेगुरु साहब जी नाम श्री वाहेगुरु साहब जी नाम श्री वाहेगुरु साहब जी असा महला पंजवा नियुक्त जी अकै सदी संगा कुदरत वरतै रूप अर रंगा करे न चुरै ना मन उमरो बुनहारा अवनासी आपकृत गोचर सदा सलामत खजू हमारा रहो तेरे दासवे को किसकी कान किसकी मीरा राखे आन जो लौटा प्रभ किया अजात फिर लौटे को किसकी सात बेमुचा जा बेप्रवाह नानक दास कहो गुरबाहो असा महला पंजवा हर रस छोड़ हो छे रस माता घर में बस बाहर उठ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार कर्द झूठी जग काथा रहाओ बजो साहिब का से बरानी ऐसे गुण है साध्यो प्राणी चोलू जो साधी संगी काम न आवे सो फिर फिर मंगी कौ नानक कृपा दीन दयाला तू पावे तू कर

आपे करता अवर ना कोई, ये जनसरता के हाथ रव रहा प्रभु साहब के साथ। पूरा पूरी बंत बनाई नानक पाक पे मिली वड्याई। आजा महला पंजवा गुर के शब्द।

अहंकार कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी थिन माया, साध संगत हर कीर्तन गाइए, एहो आसान गुरु तै पाइये, रहाउ दूजा आसा महला पंजवा, घर मह सुख बाहर कुन सुखा, हर सिमरत सगल बनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपै जो तन जन तुद भावे रहो, तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत ढहे दुख डेरा, हुक्म बुझै सोई परवान, साच शब्द जाका निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, भगत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तह तह जाई, जो तुम देह सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते त्रिवत अगाई, रहो तुमरा दिया पैनो खाई, ओ प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे त्याई, तुमरे लवे ना को लाई, कहो नानक नित वे त्याई, गत होवे संते लग पाई, आसा महला पंजवा, उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए, श्रवण सुनिजय अमृत कथा, जा सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा रहो, कार्य काम बाट काट जपिए, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन स रैन हर कीर्तन गाइए, सो जन जम की बात ना पाइए, आठ पैर जिस विसरहे नाही, गात होवे नानक तिस लग पाई, आसा महला पंजवा, जाके सिमरन सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास, आनंद करो प्रभ के गुण गाव हो, सतगुर अपना सद सदा मनाव हो, रहो सतगुर का सच शब्द कुमावो, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मत गुरदीना, एहो सुख नानक अनदिन चीना, आसा महला पंजवा, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जब तो चो कुंट माने, दर्शन मागो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, रहाओ जाके निकट न आवे कोई, सगल श्रेष्ठ उआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु नावत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एक नैन निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रताप साध कै संगे, हर हर नाम त्यावो रे रहो, सगल समगरी जाके सूत परोई, घड़ घड़ अंतर रव्या सोई, उपत परलो किन मैं करता, आप लेपा निर्गुण रहता, कर्ण करावन अंतर जामी, आनंद करहे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पुवारे, दुलाभ देहे जीती नहीं आरे, किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर, भय पनीत संतन की धूर, रहो प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिज भेटे जिस तुर संजोग, मन आनंद मंत्र गुरदिया, त्रेसन बुझी मन नह चलतिया, ना पदार्थ नौ निध सिद्ध, नान गुरते पाई बुद्ध, आसा महला पंजवा, मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे, साध सेवा अग कटे कनेरे, सूख सहज आनंद खना
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾ ਰਹੋ ਬਿਨ ਸਿਓ ਮਨ ਕਾ ਮੂਰਖ ਡੀਟਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗਾ ਮੇਟਾ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਲਏ ਰਤਨ ਜਨਮੇ ਹੋ ਸਫਲ ਭਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਮਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਬਦ ਸਦਾ ਸੰਭਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਝਾਰੇ

कर्ण करावन हार प्रभ सोए रहो मूरख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संजम कर्म ना साधा नाम प्रभु का मन है अरादा पिछू न जाना मत मेरी तोरी बिन मत नानक ओट प्रभ तेरी आसवा महला पंजमा हर हर अखर दोए एह माला जपत जपत पाए दीन दयाला करो बेनती सतगुरु अपनी कर कृपा राखो शरणाई मोको देहो हरे हर जपनी रहो हर माला और अंतर धारे जन मन का दुख निवारे हृदय संभाले मुख हर हर भूले सो जाने तुत कतहि ना डोले कहो नानक जो राचे नाए हर माला ता के संग जाए आसा महला पंजमा जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेपना व्यापे कोए हर का सेवक सदी मुक्ता जो किच करे सोई पल जनता के अत निर्मल दास की जुगता रहो

तुम्हारी, ओए निर्गुण को ले उधारी रहाओ। मिट गया दुख बसारी चिंता, फल पाया जप सतगुर मंत्र। सोए सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए। कहो नानक कौन ओह कर्मा, जाके मन बसिया हरनामा। आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगुते हर सिमरन कर। हर जन छूटे सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते। रहाओ भो परम भो जोन पुआया, अस्त्र भगत हर चरण ते आया। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा। कहो नानक जो प्रभ सिरनाई, इहा सुख आगे गत पाई। आसा महला पंजवां।

में अबरा को पहुँच ना साके चंड तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहजानंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय मह दी जय आसा महला पंजवा मन त्रिपतानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाक ग्रह सब किच है पूरन सो भेटिया निरभय।

गर्भ मोह तज हो रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। नेमक नेमक एही अरादो, दिन सरैन एह सेवा साधो। भय कृपाल गोपाल गोविंद, साध संग नानक बख सिंध। आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे न कोए। प्रभ की प्रीत होमे मल कोए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए। सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घट घट आधार रहो। प्रभ की प्रीत भय सगल निदार।

मिटी है चिंत प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरह प्रभ की प्रीत जम ते नहीं डरै प्रभ की प्रीत सगल उधारे प्रभ की प्रीत चले संगारे आपो कोई मिले ना भूले जिस कृपाल तिस साध संग भूले कहो नानक तेरे गुरबाण संतोट प्रभ तेरा तान आसा महला पंजवा धूप दोए कै राज कुमाया कर अनर्थ विहाजी माया संच

संभार निकस्या पूकता होए गयो सुहार उच्चे मंदर महल अरदानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अर धिया मोहे पचे पंच अंधा मुआ।

प्रभ अपने बिन अवन न जाने, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर कर जी कैदा तारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संति चली, ताका संग बादशह सुरदेव उमोग।

बहुर बहुर तिस लागे पाई, साल ग्राम हमारे सेवा, पूजा अर्चा बंदन देवा राव। घंटा जाका सुनिय है चौकुंट, आसन जाका सदा बैकुंट। जाका चवर सब ऊपर झूले, ताका धूप सदा पर फुले। घड़ घड़ संपट है रे जाका, भाग सभा संग है सदा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्रा

पैर गुरपुरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसिया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान। आसा महला पंजवां।

रहाओ। सोई काम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू दे अला। जो ना डहंदो मूल सो कर रास कर, इको चित वसाए कदे ना जाए मर। इना प्यारा राम जो प्रभ भाणिया, गुर प्रसाद अकत नानक बखाणिया। आसा महला पंजमा जिन्ना ना विसरे नाम सेक नेया। भेद ना जान हो मूल साई जेया, मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया।

ताको भौ करिए गुर सेवा महल पाइये जग दूतर तरिए त्रेष्ठरी सुख पाइये मन माए निधाना

कर्ता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।